0: with that, we come to the end of this current episode of Radio Sai Bhajan Classroom. If you have any queries or comments, as always, you can write to listener@radiosai.org. The sound engineers for this program are Abhishek and Sunil. The background score was done by another alumnus from Chennai, T.S. Ramakrishnan. With heart full of gratitude, we offer this program at the lotus feet of our beloved Bhagwan. You were listening to an episode of our program, Radio Sai Bhajan Classroom. This episode was first aired on the 18th of February, 2016, as part of Thursday Live from Prashantinilayam on Asia Stream of Radio Sai Global Harmony. This program was hosted by Team Radio Sai's Bishu. Thank you and Sai Ram.
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: Bhagwan Sri Satya Sai Baba ne सन 1973 के ग्रीष्मकालीन कक्षाओं में श्री आदि शंकराचार्य विरचित भज गोविंदम पर महत्वपूर्ण प्रवचन प्रदान किए। इन प्रवचनों में भारतीय आध्यात्मिकता और वेदों का सार भरा हुआ है, जिन्हें सबको सुनकर लाभान्वित होना चाहिए। अब आप भगवान बाबा द्वारा दिनांक 17 जून 1973 की शाम को दिया गया प्रवचन सुनेंगे।
3: भूमिका। अपने सुधा सदृश इस प्रवचन में भगवान बाबा अध्यात्म से संबद्ध अनेक शब्दों की सरल व्याख्या के माध्यम से छात्रों और भक्तों के संदेहों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। शब्दों के यथार्थ अर्थ से भटक जाने पर बड़ा अनर्थ हो सकता है, इसलिए किसी तथ्य से अवगत होने के बिंदु पर आरंभ कर स्वामी अंततः आत्म साक्षात्कार के बिंदु पर प्रवचन को समापित करते हैं। इन दो बिंदुओं के बीच में ही भारतीय दर्शन का सार संग्रहित किया गया है। गंभीर तथ्यों को भी भगवान बाबा अत्यंत सरल उदाहरणों और प्रतीकों के माध्यम से समझाते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति में भी वेदांत के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। यह रुचि ही व्यक्ति को साधना मार्ग की ओर प्रोत्साहित करती है।
4: कर्म मार्गंबु विडरानी कालीबाट, कर्म मार्गंबु विडरानी काली नडकत,

जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातपि गरीयसी. मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन. वी आर ग्रेटफुल टू बी बोर्न इन द सीक्रेट लैंड ऑफ भारत विच इज त्याग भूमि कर्म भूमि योग भूमि. वयम अत्र संजाता डिस्क्राइब्स द ग्लोरी ऑफ भारत.

मैं प्रभु मैं प्रभ सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे मैं सदा रावे पिरे अपना सचड़ै शब्द विचारे सच्चै शब्द विचारे रंग राती नारे मेरा सतगुर प्रीतम पाया अंतर रंग राती सहजे माती गया दुश्मन दुख सवाया अपने गुर कहो तन मन दीजै ता मन भीजै तृष्णा दुख निवारे मैं फिर सच पछाणिया होर भूली अवगण यारे सचड़ा आप जगत्यो पाया गुर बिन कोर अंधारो आप मिलाए आप मिलाए आपे दे प्यारो आपे दे प्यारो।

ज्ञान रतन काट चानन होवा नानक नाम प्यारो सचड़ा आप जगत उपाया गुरबिन कोरिया अंधारो वड़ा समा

नानक नाम निधान है गुरमुख पाया जाए, मानमुख कर होंदी वथ ना जाननी, अंधे भौक मोहे बिललाए। महला तीजा कंचन काया निर्मली, जो सच नाम सच लागी, निर्मल जोत निरंजन पाया, गुरमुख परमपौ पागी। नानक गुरमुख सदा सुख पावै, अंदन हर बैरागी। पौड़ी से गुरसिख तन तन है, जिन्नी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, तिन होमै दुबदा पन्नी। बिन हर नावै को मित्र नाही, विचार डिठा हर जन्नी। जिन्ना गुरसिखा कहो हर संतुष्ट है, तिन्नी सतगुर की गल मन्नी। जो गुरमुख नाम ते आए दे, तिन्नी चढ़ी चवगण वन्नी। श्लोक महला तीजा मनमुख कायर करूप है, बिन नावे नक नाहे, अंधन तंदे व्यापिया, सुपने पी सुख नाहे। नानक गुरमुख होवे ता उबरे, नाहे ता बदे दुख सहाहे। महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहणे, गुर का शब्द कमाहे, अंतर सांत सदा सुख, दर सच्चा सोभा पाहे। नानक गुरमुख हर नाम पाया, सहजे सच समाहे। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई, गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई, बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया, शब्द ना लागो पाओ, उसनो सुख न उपजै, भावै सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिलै, सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर लोड़ लहो, ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो। जित सेवै जन्म मरण दुख जाए, सहसा मूल ना हो वही, हो मैं शब्द जलाए। कूड़ै की पाल विचों निकलै, सच वसै मन आए, अंतर सांत मन सुख होए। सच संयम कार कमाए, नानक पूरै कर्म सतगुर मिलै, हर जियो कृपा करे रजाए। पौड़ी जिसकै कर दी बान हर होवै, तिसकी मुठी विच जगत सब आया। तिसको तल की किसै दी नाही, हर दी बान सब आन पैरी पाया। मानसा कहो दीवाणो कोई नस भज निकलै, हर दीवाणो कोई किथै जाया। सो ऐसा हर दीवान वसिया, भगतां कै हिरदै तिन रहिंदे खुंदे आण। सब भगतां अग्गै खलवाया, हर नामै की वड्डी, हर नामै की वड्याई, कर्म प्राप्त होवै। गुरमुख विर लैकनै ते आया, श्लोक महला तीजा बिर सतगुर सेवे जगत मोआ, बिरथा जन्म गवाए। दूजै पायत दुख लगा, मर जमै आवै जाए। विष्टा अंदर वास है, फिर जोनी पाए। नानक बिन नामै जम मारसी, अंत गया पछताए। महला तीजा इस जग में पुरख एक है, और सगली नार सबाई। सब कट भोग वै अलिपत रह, अलख ना लखना जाई। पूरे गुरवे खालिया, सब दे सोजी पाई। पुरख है से वह से पुरख होवै, जिन्नी हो मैं शब्द जलाई। तिसका श्रीक को नहीं, ना को कंटक वैराई। निहचल राज है सदा तिसकेरा, ना आवै ना जाई। अंदर सेवक सेवा करे, हर सच्चे के गुण गाई। नानक वेख विकसिया हर सच्चे की वड्याई। पौड़ी जिन कै हर नाम वसिया, सद हिरदै हर नामो तिन कौ रखनहारा। हर नाम पिता, हर नामो माता, हर नाम सखाई मित्र हमारा।
ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ, ਹਰ ਨਾਵੇਂ ਨਾਲ ਮਸਲਤ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਸਾਰਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਤ ਪਿਆਰੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਕੁਲ ਹਰ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਗੁਰਦੀਆ, ਹਰ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਦਾ ਕਰੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਜਿਨ ਕਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਸੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਸਦਾ ਕਮਾਹੇ, ਅਚਿੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਕਹਿ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ, ਕੁੱਲ ਉਧਾਰੈ ਆਪਣਾ, ਮੋਖ ਪਦਵੀ ਆਪੇ ਪਾਹੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਕਹੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਭਇਆ, ਜੋ ਗੁਰਚਰਨੀ ਜਨ ਪਾਹੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਹੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹਉ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਖੜਕ ਹੈ, ਖੜਕੇ ਖੜਕ ਵਿਹਾਏ, ਹਉ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੈ ਜਾਏ। ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਏ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਉਭਰੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਭਗਤ ਅਗੋਚਰ, ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਹਮ ਸਰੇਵੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਮ ਪੂਜੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਹਰ ਨਾਮੈ ਜੇਵੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਜੈ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਅੰਤ ਛਡਾਤਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੀਆ ਗੁਰਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਧਨ ਧਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ। ਹਉ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਕਹੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੀ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਾਤਾ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ

0: भगवान श्री सत्य साई बाबा सेस
1: इफ यू हैव द लव ऑफ गॉड यू कैन अकॉम्प्लिश एनीथिंग हाउएवर ग्रेट अ स्कॉलर वन मे बी वॉट एवर रिचेस एंड कंफर्ट्स वन मे कमांड इफ वन हैज नो फेथ इन द सेल्फ वन वुड बी हॉन्टेड बाय फियर Self confidence is a prime requisite. Without it, you cannot succeed in any enterprise or enjoy anything. Love of the divine is the first requirement in the march towards the realization of humanness. You must have one-pointedness and strength of mind. The mind must be unwavering, and the heart must be pure and unpolluted.

पाद त्वय प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरयो कर योग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तो रंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के पूप भली बिद न्यावत शीस ना जात बिचारे एते पहे तो कहां पहे पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देख जसान को बाजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गूड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्रीपा श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जबान सबान के पेख पौन आहार जति जत तार सब ऐसो बिचार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख शुद्ध सपा दुरंत दुआ सो सासना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हले नहलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मिलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर या पार बड़े बरे यार अब चार सार की तार पिछैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बत नहीं चकचार लवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन पर तापन बाढ़ जै तुन पापन के बहु पुंजख पेंगे सास मुंह प्रसन्न फिर जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नारादप मानव इंद्र गजेंद्र नारादप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न दहे तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो भक्त्यान लगायो नात फिरयो लिए सात समुंदरन लोक गयो पर लोक गवायो बास की ओ बखियान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन लेहो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू